मैं खड़ेरी ढूर बनकर भूर उठू तब तुम मोरलाक पानी बनकर भर सट। एक घची के मिलन के बाद वो एक काम के प्रकाश तुह बाप बनाकर उड़ाकर फिर से मन से दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव कारण तू बद्रे मैं धरती। हाँ वो एक दूसर से दूर रख पे करल कब्बुनी और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।